0: You are listening 97.1 FM.
1: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
2: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Faza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
5: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you are running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
0: हिट म्यूजिक, बैक टू बैक।

0: and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
1: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
7: फजान 97.1 FM,
8: आई लव इट।

0: जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 077152।
7: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: Hey, Adam.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, यहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है।

0: ना दालें हैं ना चावल हैं और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पार्क फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
2: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: You are listening 97.1 FM.
7: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
8: You are staying. We are playing.
9: Faza 97.1 FM.

0: जन नेड़े
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting,

0: and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
1: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
2: जबरदस्त हिट्स।
3: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
4: फजा 97.1 FM।
3: आई लव इट।
5: This is a public service announcement.
6: Everybody. The station
7: that plays
8: foot tapping music.
9: Huzzah 97.1 FM.
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ. तो जुड़े रहिए, सुनिए.
11: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: It's
14: music never sounded better.
15: Fazan 97.1 FM.
16: I love it.
10: You are listening 97.1 FM.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप फिल्मी गाने,

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन दैट प्लेज
5: फुट टैपिंग म्यूजिक.
6: फजान 97.1

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

Bobby.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07-59-150-669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर।

0: और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 077152।
1: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-201-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में एक बार फिर आपको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए, खुश आमदीद कहते हुए आपके सामने हाजिर है।

जी, अक्सर मैं उन लोगों को स्वागत करता हूँ जो लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़ते हैं 97.1 FM पे या फिर डैप पे या फिर कभी हमारी ऐप पे। ऐप के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि ऐप को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ना रेडियो फजा 97.1 FM ऑफिशियल। आप सर्च करेंगे कहाँ पे, आप सर्च करेंगे जनाब गूगल स्टोर पे या प्ले स्टोर पे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ, गोल्डन कलर में या येलो कलर भी आप कह सकते हैं, पेज कलर में लिखा हुआ फजा आपके सामने आएगा। उसको डाउनलोड कीजिए, गेट कीजिए और जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज़ ठहरेगी आपकी स्मार्ट होगी नजर। जी गुड मॉर्निंग नॉटिंघम, सवाल खैर कहते हुए अल्लाह हबीबी या नूर लाइन साकन ख्याली मरहबा मरहबा मरहबा। जी बिल्कुल, नाम 01157009711 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप मुझसे रابطہ करेंगे। रابطہ करने के साथ साथ मैं एक बार फिर से आहिस्ता आहिस्ता रिपीट किए देता हूँ नंबर 01157009711। और अलावा से हमारी बाकी ट्रांसमिशन के बारे में जानने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट विच इज़ radiovaza.co.uk। और आपको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हवाले से भी बताता चलूँ कि अगर आप लाइव स्ट्रीम भी हमें सुनना चाहते हैं, और डेफिनेटली वो महिलाएं जो इस वक्त घर में बैठी हुई हैं, जो लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं और अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना दवा हैं, पहुंच चुके हैं, कुछ लोग जो अपनी सेकेंड शिफ्ट से या नाइट वाली शिफ्ट से वापस आ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने घरों को जाके आराम करने की, सुकून करने की, तो जनाब सुकून करने की ज़रूरत नहीं है। इस देश के परदेश में, इस परदेश के देश में हम आए हैं मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, तो फिर अगली शिफ्ट का इंतजार कीजिए और फिर जाइए उस शिफ्ट पर, लेकिन एक अच्छा सा तगड़ा सा ब्रेकफास्ट करके। और कहते हैं दिल के मौसम अच्छे हों तो सारे ही मौसम अच्छे लगते हैं, लेकिन जितनी गर्मी पड़ रही है ना सामीन, अब मुझे ये लगता है कि दिल का मौसम भी पिघलता हुआ जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारा बाहर का मौसम है उसकी सूरत हाल कुछ मैं आपको एक बार फिर से बताता चलूँ ताकि आपको भी रिमाइंड हो जाए कि इस वक्त हम किस पोजिशन पर खड़े हैं। ना 27 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, 14 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रिकॉर्ड किया गया। और आपको ये भी बताते चलिए ना, कल माय गुडनेस इस वीक में वी आर गोना टच 30 डिग्री, कमाल, बहुत ही गर्मी, कहते हैं ना हाई गर्मी। वैसे तो ये ट्रैक मुझे प्ले करना चाहिए, लेकिन कुछ मेरे पास जो ट्रैक्स हैं वो अरेबिक और हिंदी मिक्स होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट जॉनर है, प्रोग्राम से हट के चलने का नहीं, रूटीन से हट के चलने का। प्रोग्राम का तो मेरा अपना एक एरिया है, उस एरिया पर मूव करते हैं। ये मैं आगे पीछे की बातें इसलिए आपसे करता हूँ कि मुझे एहसास हो कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं, और मौजूद रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर लाइव कॉल भी कर सकते हैं 01157011।

लिंग एक बार फिर मैं कोट ऑफ द डे आपके सामने रखे देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्फाज आपकी ज़ुबान का या आपके लहजे का साथ नहीं देते। इसका मतलब ये होता है कि या तो आप कंफ्यूज हैं या फिर आप कोई ऐसी बात करना चाह रहे हैं कि जो आपकी सोच से बालातर है। अक्सर कहते हैं ना, सियाने गल आँख के ने, उसे आज तक नहीं पता चला सियाने आँख के जाने कुदर ने। लेकिन हमारी जितनी भी साउथ एशियन कम्यूनिटी है, जितनी भी इस नॉटिंगम शायर की कम्यूनिटी और जितनी भी इस खूबसूरत सी सिटी में सिविलाइज लोग हमारे साथ साथ रहते हैं, कमाल की खूबसूरत कम्युनिटी को बना के रखते हैं। और जितने भी बड़े लोग बड़ी जगह पे पहुँचे, बड़े काम करने से पहुँचे, तो एक सियाना बंदा कहता है, मेरी तरह का डेफिनेटली, वो कहता है जनाब, कोई बड़ा काम सिर्फ वो शख्स करता है जो अपने आप को छोटा काम करने पे राजी कर ले। बिल्कुल जनाब, इसके बारे में अगर आपकी कोई विशेष वाली टिप्पणी है या फिर आप कोई अपने विचार देना चाहते हैं या अपनी सोच की धारा को सिमत में बहाना चाहते हैं, उस दिशा में बहाना चाहते हैं जो आपको कामयाबी की ओर ले कर चलती है, तो फिर डेफिनेटली रब्ता कीजिए मुझसे 01157 0971 पे, ताकि आपका जो मैसेज है वो हमारे बाकी लिसनर्स तक भी पहुँचे। अलावा जी मैं आपको बताता हूँ, जो नंबर मेरे पास इस वक्त आए हैं उनमें नाम मोहसिन हमें दुबई से ट्यून किए हैं, थैंक यू वेरी मच। अदनान रॉशडेल से नहीं, नॉटिंगम शायर से नाम हमारे साथ मौजूद है, NG8, थैंक यू वेरी मच। नाम आप तो बिल्कुल ही हमने क्लोज कर दिया। और जनाब इसके अलावा रॉशडेल से शाह साहब हमें ट्यून कर चुके हैं, और पाकिस्तान से जनाब हमारे साथ सबा मौजूद हैं, थैंक यू लॉट, आपने भी ट्यून किया। और इसके अलावा आज जो स्पेशल से हमारे गेस्ट हैं जनाब, ये हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी गुड कॉस्ट, ये सईद साहब हैं USA से, और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी सिनेमा स्क्रीन के हवाले से, और मुख्तलिफ चीज़ों को भी अक्सर नोट करते हैं या बताते हैं या समझाते हैं, तो समझाने के साथ साथ काफ़ी सारी और इनकी तारुफ़ हैं, कभी तारुफ़ करवाएंगे आपको। एनीवे गप शप भी हमारे साथ साथ चलेगी और आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि ट्यून करके रखिए 97.1 FM। थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने BGM को ना, जरा हल्के फुल्के छोटे से ट्रैक डिफरेंट से लेके आता हूँ, हिंदी अरेबिक मिक्स ट्रैक हैं, कुछ मेरे पास हमेशा रहते हैं, कुछ आपको पता है कि जो मौली बंदा होता है, माहौली बंदा जिसको कहते हैं, जो माहौल बनाने वाला होता है, जो इन्वायरमेंट को डिटेल कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंट को ब्रीफ कर सकता है, जो इन्वायरमेंट को अपने मुताबिक चलाना जानता है, तो जनाब मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे ये बताया कि मेरे जो बड़े प्यारे से, बड़े डिसेंट से और बड़े सिविलाइज से और बड़े लिटरेट से जो मेरे लिसनर्स हैं, उन लिसनर्स को क्या सुनना है। तो सुनिए, खूबसूरत से ट्रैक भी हमारे साथ साथ है, और इसके अलावा

नहीं भी या यूरोप को भी मिला ले जितनी एयर कंडीशन की सेल बनी है ना, कमाल की सेल बनी है। और हर जगह पे ना टावर यूनिट्स लोग लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि ये जो हमारा मौसम है ना, इस वक्त जो वेदर थोड़ा सा हीट हुआ है, ये इसी साल है, नेक्स्ट साल की जो प्रोजेक्शन है, जो माहौलियाती तब्दीली है जिसको आप इन्वायरमेंटल चेंज कहते हैं, वो चेंज थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। और नेक्स्ट थ्री ईयर्स में हमारे पास जो है वो ठंड की रेशो वैसी रहेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चा मत कीजिएगा।

ये तो जी मेरे पसंद की ट्रैक है और मैं बातें भी साथ साथ करूँगा, आपको पता है तंचो मजाक भी साथ साथ रहता है। और उसके साथ साथ आपका मेज़बान नासिर खान गपशप भी हल्की फुल्की करता है आपके साथ, तंज मज़ाक के साथ साथ आप लोगों को जगाने का भी काम मेरा है। जो लोग अभी तक सो रहे आपसे गुजारिश है कि यार अब उठ जाए ना, उठने में कितना टाइम लगाएंगे, लेकिन अगर आप अभी तक रेस्ट कर रहे हैं तो यकीन करें आप बहुत लकी हैं जो इस देश के प्रदेश में और इस प्रदेश के देश में इतनी खूबसूरत तरीके से रेस्ट भी कर सकते हैं। हमें तो ये रेस्ट नसीब नहीं है, लेकिन अगर जिन्हें नसीब है चलेंगे, ऊपर वाला तो देख रहे हैं ना।

जी तो लिसनर ट्रैक्स भी आप साथ एंजॉय करें और आपका मेहमान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल के अता कर रहा हूं उसे खुश आमदेद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम स्वागतम उन समातों का जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून के 97.1 FM पे या फिर डैप पे अलावा हमारी ऐप पे तो जनाब गप सकते हमारे साथ साथ चलिए और जो मैंने आपसे एक चीज़ डिस्कस की थी वैसे फीफा 2026 का एक बड़ा ज़बरदस्त था वो एक एरा चल रहा है ना और जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे जो नॉटिंघम शहर के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं और उसके साथ साथ जितनी हमारी और एक्टिविटीज़ हैं जैसा कि आप ये जानते हैं कि अब रेडियो फ़ज़ा चैपल हाउस नॉयल स्ट्रीट पे एक बाकायदा अपना पूरा एक कॉर्पोरेट सेक्टर लेवल का कुछ ज़बरदस्ताना कम्युनिटी हॉल लेके आया सिर्फ और सिर्फ हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए तो उसको भी अवेल कीजिए और उसके साथ साथ मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना जो एक फाइनल इवेंट है या उसको रिवाइज देखने के लिए या उसको लाइव देखने के लिए कोई चैपल हाउस में एक ज़बरदस्त सा एक इंतज़ाम किया जाए एक बड़ी स्क्रीन पर देखने का और उसके बाद जो लोग शामिल होंगे उनके लिए कोई हाई टी या कोई छोटा मोटा भी एक सिस्टम किया जा सकता है। आपकी क्या राय है मेरे लिसनर्स की क्या राय है इस हवाले से ये आपने मुझे अपडेट करने है ना मेरे स्टूडियो के लाइव व्हाट्सएप पे मैसेज करके जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है आपसे गुजारिश है कि अपना पैगाम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं वॉइस नोट भी भेज सकते हैं लिख के भी दे सकते हैं और अपना पोस्टल कोड लाजमी और अपना नाम लाजमी साथ लिखिएगा कि आपकी इस हवाले से क्या राय है और स्पेशली नाम आपको ये बताते चले कि जितने भी हमारे नॉटिंघम शहर के इवेंट्स हैं जैसा कि जो भी अपकमिंग होते हैं प्लान होते हैं वो आते हैं जैसे नेक्स्ट मंथ में आपको मिलेगा जनाब आज़ादी काइट फेस्टिवल ऑल द टाइम ऑल द वे फ्रॉम नॉटिंघम रेडियो 97.1 FM और जेड के इवेंट की एक कामयाब और मिली जुली काविश से क्योंकि जनाब ये प्योर एक साउथ एशियन प्रोजेक्ट्स हैं और ये प्रोजेक्ट्स ये इवेंट्स इसलिए किए जाते हैं कि इस गहमा गहमी के दौर में इस पुरफितन दौर के अंदर इंसान को थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए होती है अब बिजनेस कम्युनिटी एक दूसरे के साथ मिलती है स्टॉल्स बुक होते हैं स्टॉल्स होल्डर एक दूसरे को जाना शुरू करते हैं बिजनेस एक्सटेंड होता है आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं उसके बाद जो ग्रेट फुटफॉल सेट के इवेंट्स और रेडियो फिजा हर साल की तरह आपको देता है कामयाब इवेंट में पतंगे उड़ाते हैं अपनी मर्जी की और पतंगे उड़ाने के साथ साथ रंगीनियाँ भी इंजॉय करते हैं मौसम को भी इंजॉय करते हैं क्योंकि बाहर का मौसम होता है और जब बाहर का मौसम हो तो फिर ये इवेंट रेडियो फिजा सेट के इवेंट्स ना लेके आए ऐसा हो नहीं सकता इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपडेट देखने के लिए इन सारे इवेंट्स की radiofiza.co.uk को मस्ट विजिट कीजिए और बताइए कि आपके विचार जो स्पेशली मैंने एक ऑफर दिए मैं कहता हूँ ना कि कहते हैं नकारा खल्क आवाज़ खुदा शायद ऐसी ही है अगर कुछ गलती हुई तो फिर इसको इग्नोर कीजिएगा या फिर मुझे करेक्ट कीजिए करेक्ट करने के लिए भी आपको मेरे स्टूडियो के अलावा व्हाट्सएप नंबर 0115 7100971 डायल करना पड़ेगा अगर हम कुछ फाइनल इवेंट देखना चाहते हैं जब हम सारे एक यकजा हो के एक आवाज़ लगा के जरा मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे ना तो फिर आप समझ रहे हैं ना ज़रा हल्ला गुल्ला भी होता है और उसके बाद फिर मैनेजमेंट मानने के लिए मजबूर हो जाती है अकेला बंदा जब कोई बात करेगा बोलेंगे भाई तुम अपना शो करो निकलते उन्होंने ऐसी बात नहीं ना ये इवेंट्स आपके लिए और अगर हम ऐसा कोई इवेंट कामयाब यानी इस तरह की एक लाइव स्क्रीन पे हम फाइनल को या रिवाइज फाइनल का कोई एक मैच देखना चाहते हैं स्पेशली जो यंगस्टर हैं ताकि एक नई मोटिवेशन बने और थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ हम लोग भी आएँ उसके साथ साथ और भी गपशप होती काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों के सामने आती हैं इसलिए इस लाइव को समझिएगा जानिएगा बताइएगा तो जनाब ये सिचुएशन है बात में कह रहा था कहते हैं कोई बड़ा काम सिर्फ वो शख्स करता है जो अपने आप को छोटा काम करने पर राजी कर ले अब दो चीज़ें हैं ना अपने आप को छोटा काम करने पर राजी कर लेना और छोटा काम कर लेना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं फलसफा नहीं बयान करूँगा फिलॉसफी से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन कुछ सियानी बातें तो डेफिनेटली की जाती हैं कि अगर इंसान कुछ देर के लिए ये सोचे या इंसान कुछ देर के लिए ये समझे कि मैंने अगर कोई बड़ा काम करना है तो मुझे उससे पहले छोटा काम करना पड़ेगा तो अक्सर छोटा काम हमारे पास जो इस मुल्क में यानी हमारे इस देश में जो सिविलाइज लोग हैं जहाँ पे हम रहते हैं साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में जो हमारे पास छोटे काम आते हैं लोग कैब भी चलाते हैं इसको कभी भी छोटा काम मत समझिएगा डिश वॉशिंग भी होती है छोटा काम नहीं है हर वो काम जो आपको रिस्क हलाल अता करता है जी याद रखिएगा ऊपर वाले ने परवरदिगार ने कहा है कि रिस्क हलाल ऐन इबादत है।

जी तो मैं अपनी राय अपनी विशेष टिप्पणी आपके सामने रख रहा था क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा रह चुका है मेरे और आपके दरमियान, लेकिन मैं बातें करता रहूंगा। आप तक अच्छा पैगाम पहुंचना चाहिए, यही हमारा मेन मोटो है, यही हमारा मेन रीज़न है इस चीज़ के लिए कि आपके तक एक अच्छा सा पैगाम पहुँचे और पैगाम के साथ साथ ज़रा मोटिवेशन भी रहे। आज के हवाले से अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनता है किसी जगह से भी, अपनी एम्प्लॉयड से हट के नहीं, जो लोग तो प्रॉपर एम्प्लॉयड के साथ काम करें, अपना बिजनेस करें, अपना कारोबार करें, तो आपसे गुजारिश है कि फिर अपने एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रखिएगा और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी काम है कि फिर जहाँ पर भी आप काम करें वहाँ पर कोई भी काम छोटा या बड़ा समझ के मत कीजिएगा। आजकल के दौर में ना प्रोफेशनल लेवल पर या बिजनेस मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन साइंस में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो लोग थोड़े से ओहदे पे आ जाते हैं वो कहते हैं कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना है ना पैसों के अलावा, लोग बात नहीं करते, और जब लोग बात पैसों के अलावा नहीं करते तो फिर लोगों से बात करने का फ़ायदा भी नहीं होता, लेकिन लोग पैसों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप बिल्कुल पैसों को अहमियत मत दीजिए, आपने पाउंड्स को अहमियत देनी है क्योंकि द ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यहाँ पे हमारे पास वो चलता है, आपने पाउंड्स की अहमियत देनी है और उसके साथ साथ आपने जो भी मेहनत करनी है उसका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपने हमेशा ऐसी जगह पे मुख्तस करना है जो आपके लिए बड़ा कामयाब और बड़ा राज और घटा

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
8: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर।
7: फजा 97.1 FM, हर पल आपके साथ साथ।

السلام عليكم، نمستي، ستسياكار، and good morning. हमारे सभी सुनने वालों को और हमारे सभी चाहने वालों को रेडियो फजा 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से वेलकम करती हूँ. तमाम सुनते हुए समातों को डीवा डायलॉग में, और मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा. और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो द डीवा डायलॉग, सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे. तो लिसनर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेडियो फजा 97.1 FM ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट. सुधे पूरी कोशिश करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के पैटर्न को हम लेके चलें अब से लेके ठीक दो घंटे तक, यानी ठीक 10 बजे से लेके ठीक 12 बजे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ. जी, पूरी कोशिश करेंगे कि मिलकर बनाएं आपके आज के इस दिन को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा यादगार. कुछ सुनी जाएंगी आपकी बातें और साथ ही साथ कुछ सुनाई जाएंगी आपको अपनी कहानियां. गुफ्तगू जो दिल को छू जाए, बातें जो जिंदगी को बेहतर बनाए. तो टेल लिसनर्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी उठाइए फोन 01157100971. दिस इज अवर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, यानी कि ये रेडियो फजा 97.1 FM का वो वाहिद नंबर है जिसके जरिए से आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं. सो डियर लिसनर्स, आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, या फिर आपका आज के दिन के हवाले से क्या कहना है, आज के हवाले से भी और इसके साथ साथ अगर कोई भी टेंशन, उलझन या फिर कोई परेशानी या कोई दिक्कत आपको परेशान कर रही है, तो आपके उन सभी मसलों का, मसाइल का और उन सभी चीज़ों का हल है हमारे पास. सो सिंपली आपको करना कुछ यूं होगा कि आपको उठाना होगा फोन और वहां जाके नंबर डायल करना होगा 01157100971, और बस अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम हमें लिखकर भेज दीजिए, या फिर जो भी कुछ आपके माइंड में इस वक्त चल रहा है, या इसके अलावा आप आज क्या करने का इरादा कर रहे हैं, कुछ भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपकी कोई पसंदीदा फरमाइश है, या आप चाहते हैं कि कोई ऐसा गाना हम शो में प्ले करें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, आपके दिल के बहुत करीब हो. अच्छा, अक्सर होता है ना कि ऐसे कि हम चाहते हैं कि हम कोई अच्छा सा प्यारा सा गाना अपने किसी चाहने वाले को डेडिकेट करें. सो उन सभी चीजों के लिए आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं. बस आपको इतना ही करना है कि आपको हमारे नंबर को अपने फोन में सेव करके रखना है. सो डियर लिसनर्स, साथ ही साथ आपको बताते चलती हूँ कि radiofaza.com.uk ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं. इसके अलावा आप हमारे साथ, यानी रेडियो फजा 97.1 FM के साथ जुड़े रह सकते हैं, और आपको हमारी डेली लाइव अपडेट्स भी इसी वेबसाइट के थ्रू मिल सकती हैं. और अगर आप चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को बआसानी अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. अच्छा, सिंपल सा एक तरीका है, मैं आपको बता देती हूँ. आपको करना कुछ यूँ होगा कि आप अगर तो एप्पल यूजर हैं, सो सिंपली आपको जाना होगा एप्पल स्टोर, और अगर आप हैं एंड्रॉयड यूजर, सो आपको जाना होगा
गूगल स्टोर, वहां जाके आपको सर्च करना होगा रेडियो फजान 97.1 FM। और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारी एप्लीकेशन यानी रेडियो फजान 97.1 FM की वाहिद ऑफिशियल एप्लीकेशन। सो डियर लिसनर्स, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, बने रहें, डेली की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हमारे आने वाले तमाम तर नए शोज के हवाले से भी आपको इस एप्लीकेशन पर अपडेट मिल जाएगी। साथ ही साथ आप ये भी जान सकते हैं कि आपका फेवरेट आरजे कौन से दिन किस शो में आ रहा है। सो उस हवाले से भी आपको हर तरह की नॉलेज इस एप्लीकेशन से मिल जाएगी। अब से बात करते हैं उन सभी लिसनर्स की जो इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं या फिर घर से बाहर निकल चुके हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सफर बन जाए और भी ज्यादा हंसी, सो आप अपने इस खूबसूरत से सफर को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं किस तरह से, हमारे साथ जुड़ के यानी कि रेडियो फजा 97.1 FM को ट्यून करके। सो हमारे सभी लिसनर्स जो कि ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते हमें सुनना चाहते हैं, आप हमें फजा टैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। सो वेल लिसनर्स, ये वो सभी तरीके थे जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो मैंने ये सभी तरीके आपसे शेयर कर दिए, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हमारे साथ जुड़ते हैं। सो बस इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहिए। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अभी तक आपने अपने दिन का आगाज कर लिया होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने अपने दिन का आगाज नहीं किया तो घबराने की कोई बात नहीं, आपकी फेवरेट आरजे ज़ैनब फातिमा आ चुकी हैं। तो आइए मिलकर करते हैं इस खूबसूरत से दिन का आगाज। सो डियर लिसनर्स, एक खूबसूरत से अच्छे से दिन का आगाज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम एक अच्छा हेल्दी मील लें। सो मैं हमेशा अपने शो में कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे, एनर्जेटिक गुजरे, सो उसके लिए आपको चाहिए कि आप एक अच्छा हेल्दी सा मील ले लें। सो जी, सभी डीवास को और सभी हमारे सुनने वाले मेल हजरात को इतना ही कहूंगी कि जब भी आप कभी सुबह उठें, सो सबसे पहला काम किया करें कि आप एक अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट किया करें, क्योंकि आपको पूरा दिन ढेरों कामकाज करने होते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी एनर्जी बाकी रहे कि आप पूरा दिन कामकाज कर सकें, आप एनर्जेटिक रहें और बिल्कुल भी लो फील ना करें, सो यू हैव टू नीड अ गुड ब्रेकफास्ट। वैसे भी ये वो टाइम पीरियड चल रहा है कि जहां लोग या तो अभी बिस्तर से उठ चुके होते हैं या फिर अपने ऑफिस के रास्ते में होते हैं। सो अगर आप भी अपने ऑफिस के रास्ते में हैं, सो आप इस रास्ते को खूबसूरत बनाएं, अच्छे अच्छे से गाने सुने और साथ ही हमें भी बताते रहें कि आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसी तरह के गाने शो में शामिल करें।

सो डियर लिसनर्स, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपकी सभी रिक्वेस्ट को फुलफिल करें. सो आइए मिलकर सुनते हैं अपनी प्यारी सी लिसनर की फेवरेट रिकमेंडेशन. आप सभी से मुलाकात होगी इस खूबसूरत से साउंड ट्रैक के उस पर. तब तक के लिए हमारे साथ यानी रेडियो फजा 97.1 FM के साथ जुड़े रहिए.

सो डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा साउंडट्रैक? वेल, आपके भी पसंदीदा साउंडट्रैक्स हम इसी तरह से शो में शामिल कर सकते हैं. सिंपली बस आपको हमें बताना होगा. जैसा कि लिसनर्स, आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि जब भी कोई न्यू वीक स्टार्ट होता है तो मंडे बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक समझा जाता है. क्यों? क्योंकि मंडे को हम डिसाइड करते हैं कि थ्रू आउट द होल वीक हम क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या ड्यूटीज करेंगे, और फिर हम उन सभी टास्क को प्रॉपरली असाइन कर लेते हैं. सो आई थिंक सो कि ट्यूजडे से जो रूटीन होती है वो थोड़ी सी मामूल पे आ जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि आज के दिन के हमारे क्या क्या टास्क हैं और हमें क्या क्या काम करने हैं. सो फिर आई थिंक सो कि मंडे और ट्यूजडे में ये थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है.

अच्छा, अगर हम पुराने वक्त की बात करें तो मोस्टली एनसेट टाइम्स में ये चीज समझी जाती थी कि जो ट्यूसडे है वो इट्स नॉट लाइक अ गुड डे इन अ वीक, लेकिन ये सब पुराने मिथ थे। आज कल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, लोग बिल्कुल भी ऐसे सोच नहीं रखते और वीक का कोई भी दिन हो हर एक दिन को इक्वली ट्रीट किया जाता है।

सो लिसनर्स, हमेशा की तरह जो लोग भी इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं उनको बस मैं इतना ही कहूँगी कि बी केयरफुल, क्योंकि जब भी हम ड्राइव कर रहे होते हैं सो हमें चाहिए कि हम अपना पूरा फोकस, कंसंट्रेशन और तमाम तर ध्यान ड्राइविंग पे रखें, क्योंकि अगर हल्का सा भी ध्यान इधर उधर हो जाए तो हो सकता है कि हम किसी भी बड़े हादसा का बाइस बन सकें। सो हमने खुद को हादसा से बचाना है, इसीलिए बिल्कुल आराम आराम से एहतियात से ड्राइव किया करें, ताकि ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कीमती है और इसका ख्याल अगर हम खुद नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। सो द लिसनर्स, इसी बात के साथ साथ शो में इस वक्त वक्त हुआ है एक अतिरिक्त कमर्शियल ब्रेक का। सो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, शो में बहुत सारी बातचीत होगी, कुछ आपकी बातें सुनी जाएंगी और कुछ आपको अपनी बातें सुनाई जाएंगी। सो जी, फिलहाल के लिए तो इस कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पर। तब तक के लिए हमारे संग यानी रेडियो फजा 97.1 FM के संग इसी तरह से जुड़े रहिए। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में जियो, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से खुशामदीद। आप सुन रहे हैं द डीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे। सी द लिसनर्स, ये शॉर्ट सा सिंपल सा इंट्रोडक्शन उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। सो हमें लाजमी बताइए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कि आप हमें दुनिया के किस कोने से सुन रहे हैं और आप हमें क्या करते हुए सुन रहे हैं।

सी तो लिस्नर, जैसा कि शो के स्टार्टिंग में हमने एक ऐसा गाना प्ले किया था जो कि हमारे एक प्यारे से लिस्नर की फरमाइश थी। सो मैं अब सोच रही हूँ कि शो में एक ऐसा गाना प्ले किया जाए जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और रिसेंटली रिलीज हुआ है। सो आई थिंक सो कि हमारे सभी लिसनर्स तो नेटफ्लिक्स देखते ही होंगे। सो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, आप सभी की फेवरेट मूवी तो लिसनर्स में ये बता रही थी कि आप सभी की फेवरेट मूवी वॉइस मेल फॉर इजाबेल का साउंड ट्रैक अभी मैं शो में प्ले करने जा रही हूँ। आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर यहीं से गपशप का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बातचीत का सिलसिला तो चलता रहेगा लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा म्यूजिक भी होना चाहिए।

लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो इन दीज डेज वॉइस मेल इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवी. अभी रिसेंटली ही मैंने इस मूवी को देखा है. और अगर मैं आपको इसके प्लॉट ट्विस्ट के बारे में बताऊँ तो पर्सनली इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है. स्पेशली मैं तो सभी को यही कहूँगी कि लाजमी आप इस मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी में एक ज़रा से डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात की गई है. नॉर्मली रोम कॉम्स में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलती है, वो होता है एक लव स्टोरी जिसमें सिंपली एक लड़का होता है एक लड़की होती है और समहाउ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है एंड देन बीच में कुछ मसले मसाइल भी आ जाते हैं. लेकिन वॉइस मेल फॉर इज़ाबेल की स्टोरी इन सभी रोम कॉम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा हट की है. अच्छा, हमारे जितने भी ओजी सीरीज लवर लिसनर्स हैं वो सब इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि वॉइस मेल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है टू ऑल द बॉयज हु विल लव बिफोर को. और वो मूवी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और अगर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स के इनिशियल इरा की वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी. सो अगर लिसनर्स आपने अभी तक वॉइस मेल फॉर इज़ाबेल नहीं देखी सो इट्स टाइम कि आप आज ही देखिए, क्योंकि आपको देखने के बाद बहुत अच्छी लगेगी. और आप लास्ट में मुझे आके बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी. और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं आपको अच्छी अच्छी मूवी या फिर सीरीज रिकमेंड करती रहूँ तो उसके लिए भी मुझे लास्ट में बताइएगा. सो जी लिसनर्स, जैसा कि कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी से शेयर किया था कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है एवरी ईयर आफ्टर समर, पर समहाउ अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो सकी. सो आप सब वेट कर रहे होंगे कि अभी तक मैंने क्यों नहीं रिव्यू शेयर किया. सो मैंने सोचा कि मैं अपने सभी लिसनर्स को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि ठहरिए, सब्र करिए, क्योंकि अभी सीरीज कंप्लीट नहीं हुई. सो जैसे ही सीरीज कंप्लीट हो जाएगी मैं आपसे फुल रिव्यू शेयर करूंगी और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगी कि क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए. अच्छा, वैसे जहां तक जितनी मैंने सीरीज देखी है सो इट्स मोर लाइक लास्ट समर में जो सीरीज रिलीज हुई थी टू ऑल द समर आई टर्न प्रीटी, ये जो सीरीज है ना ये बिल्कुल उस सीरीज से काफ़ी हद तक सिमिलर है. काफ़ी चीज़ें दोनों की एक दूसरे से मिलती हैं और द बेस्ट थिंग इज़ कि ये सीरीज भी अमेज़ॉन प्राइम ने ही बनाई है. सो इसलिए भी ऐसा लग रहा है कि दोनों के ग्राफिक्स, दोनों का थीम, बैकग्राउंड और काफ़ी हद तक स्टोरी एक दूसरे से मैच कर रही है. वैसे लिसनर्स, अगर आपको पसंद हो रोम कॉम्स तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आपको हमेशा अमेज़ॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन प्राइम इस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करता है कि जितनी भी वो सीरीज बनाता है वो मोस्टली बुक एडेप्शन होती हैं और मोस्टली रोम कॉम्स होती हैं. जबकि अगर हम दूसरी जानब देखें नेटफ्लिक्स की जानब, सो जो नेटफ्लिक्स की मोस्टली सीरीज होती हैं वो एक्शन बेस्ड होती हैं. सो अगर आपको एक्शन पसंद है सो आप नेटफ्लिक्स की जानब जाएं, लेकिन अगर आपको रोम कॉम पसंद है सो आपको स्विच करना चाहिए अमेज़न प्राइम पे.

नमस्ते। तो लिसनर्स, अक्सर वक़ार जब भी हम जिंदगी में कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं, फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आती है वो ये होती है कि अच्छा अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और इसके अलावा फिर सोसाइटी का भी एक प्रेशर माइंड में आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। सोचे लिसनर्स, इस डर को दिलों से निकालने के लिए चलिए आइए सुनते हैं आज का जो हमारा पहला मोटिवेशनल कोट है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं हर दिन का हर शो का आगाज करती हूँ एक खूबसूरत से मोटिवेशनल से कोट से। क्यों? क्योंकि मोटिवेशनल कोट बनाता है हमारे दिन को और भी ज़्यादा पॉजिटिव, और इसकी वजह से लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं। सो हमारा आज का फर्स्ट कोट भी उन सभी लोगों के लिए है जो कि जिंदगी में आगे बढ़ने से डरते हैं या कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले बहुत बार सोचते हैं। सो द फर्स्ट कोट सेज, इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। वैसे ये कितनी गहरी बात है अगर हम इसका मीनिंग जानने की कोशिश करें या फिर इसको समझने की कोशिश करें। सो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना आहिस्ता चल रहे हैं जब तक आप रुकते नहीं हैं। अच्छा, हम सभी लोग क्या करते हैं? हम लोग अपनी जिंदगियों में अक्सर औकात दुश्वारियों से बचने के लिए या फिर मुश्किलात का सामना ना करने के लिए अपना रास्ता बदल लेते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। हमारे साथ क्या होता है कि हम दूसरे लोगों को देखते हैं और जब हम ये देखते हैं कि दूसरों की स्पीड हमसे बहुत तेज है, सो उनकी स्पीड देखकर हम ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड खो देते हैं। हमें ऐसे लगने लगता है कि फलां शख्स हमसे बहुत बेहतर है, वो बहुत आगे निकल चुका है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। या अगर ये माइंड में थॉट नहीं आते तो साथ ही साथ ये थॉट्स तो लाजमी आते हैं कि अच्छा फलां बहुत आगे निकल चुका है, हम वहीं के वहीं हैं, हम में कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, या फिर हम बहुत ऑर्डिनरी हैं और बाकी सब बहुत स्पेशल। मैं आप सभी की बात नहीं करती, लेकिन लिसनर्स, समटाइम्स मैं खुद भी लाइफ में ऐसा सोचती हूँ कि मैं बहुत पीछे हूँ, बाकी लोग मुझसे बहुत आगे हैं, या फिर अक्सर मेरे माइंड में ये थॉट लाजमी आता है कि दूसरे लोग बहुत स्पेशल हैं या शायद मेरे में वो क्वालिटीज़ नहीं। बट लिसनर्स, याद रखिए कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, हर किसी का अपना सफ़र है, हर किसी की अपनी जर्नी है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि हर एक इंसान का, हर एक चीज़ का अपना एक वक्त मुकर्रर होता है। सो हर सितारा चमकता है अपने मुकर्रर वक्त पर। सो अगर आप रोज़ थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो रोज़ एक छोटा सा कदम उठा लेने से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सो अगर आप रोज़ाना एक छोटा सा कदम उठा लेते हैं तो आप इन सभी लोगों से बहुत बेहतर हैं कि जो कदम उठाने से डरते हैं। सो बेसिकली एक चीज़ है जिसे आप सभी ने अपने माइंड में रखना है कि हार तब नहीं होती कि जब हम धीमा चलते हैं, हार तब होती है जब हम अपनी हिम्मत खो देते हैं। सो दोस्तों, इस हिम्मत को हमने बिल्कुल भी नहीं खोना, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे कदमों से स्टार्ट करना है। जी तो लिसनर्स, ये था हमारा आज का पहला प्यारा सा मोटिवेशनल सा कोट। कैसा लगा आप सभी को ये कोट और इस हवाले से आपका क्या कहना है? 0115710971। इस नंबर के जरिए से आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आपके क्या ख्यालात हैं, क्या थॉट्स हैं इस कोट के हवाले से। जी तो लिसनर्स, इस खूबसूरत से कोट के साथ ही अभी शो में वक्त हुआ है एक खूबसूरत से गाने को प्ले करने का।
आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। आपसे मुलाकात होगी ट्रैक के उस पार, और गपशप का सिलसिला तो चलता रहेगा, होंगी बहुत सारी खट्टी मीठी बातें।

तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? अच्छा, ये प्यारा सा गाना हमें हमारे एक लिसनर की फरमाइश की थी कि आप ये गाना लाजमी शो में शामिल किया करें। सो हम उनकी फरमाइश को पूरा करते हुए इस गाने को शो में शामिल करते हैं। अच्छा, रिसेंटली एक पोस्ट सामने आई थी जिस पोस्ट ने ये कहा था कि अब अरिजीत सिंह फ्यूचर में बॉलीवुड में कोई भी गाने नहीं गाएंगे। सो इस खबर को सुनकर बहुत सारे फैंस तो काफ़ी ज़्यादा निराश हुए थे, क्योंकि सभी को अरिजीत सिंह की आवाज़ इतनी ज़्यादा पसंद है कि लोग आज भी चाहते हैं कि वो गाने गाएं। तो लिसनर्स, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंसान अच्छी वाली जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम कोई भी अरिजीत सिंह का गाना सुने सो सडनली एक इमोशनल वेव आ जाती है, और अगर किसी इंसान का हार्ट ब्रेक नहीं भी होता तो उसे भी ऐसा फील होना शुरू हो जाता है। अच्छा, पर्सनली मुझे अरिजीत सिंह की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनके गाने बहुत अच्छे होते हैं। ना सिर्फ लिरिक्स अच्छे होते हैं बल्कि आपको एक दर्द फील होता है, एक इमोशन फील होता है जो कि रॉक स्टार्स के गानों में नहीं फील होता। वेल, ये तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। कुछ को रॉकस्टार टाइप गाने अच्छे लगते हैं, कुछ को लाउड म्यूजिक, लेकिन फॉर मी म्यूजिक का मतलब होता है कि एक ऐसी शायरी हो जिसके अंदर लिरिक्स बहुत अच्छे हों, आवाज़ बहुत अच्छी हो, और लिरिक्स ऐसे हों कि जो सीधा आपके दिल पे लगें, यानी कि आप गाने को ना सिर्फ सुनें बल्कि दिल से महसूस करें। सो कुछ ऐसा ही होता है कि जब कभी भी मैं अरिजीत सिंह के गाने सुनती हूँ। वैसे ना, अच्छा अगर मैं आपको पर्सनली अपने म्यूज़िक चॉइसेस के बारे में बताऊँ तो मैं एज सच किसी एक सिंगर या फिर किसी एक आर्टिस्ट पर स्टक नहीं रहती। मैं डिफरेंट तरह का म्यूज़िक सुनती रहती हूँ, कभी पॉप म्यूज़िक, कभी के पॉप, कभी इंग्लिश, तो कभी अरेबिक। सो ये डिपेंड करता है कि इंसान का मूड कैसा है। कभी कभी दिल करता है, मेरा भी दिल करता है कि मैं थोड़ा सा लाउड म्यूज़िक सुनूं। सो उस टाइम पीरियड पे मैं सुन लेती हूँ, और कभी कभी दिल करता है कि इंसान सरा थोड़ा सा संजीदा सीरियस म्यूज़िक सुने। वेल लिसनर्स, आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है? 0115710971। आप इस नंबर के थ्रू हमें बता सकते हैं। सो पूरी कोशिश की जाएगी कि शो में वही गाने शामिल किए जाएं जो कि आप सभी को पसंद हो, क्योंकि डीवा डायलॉग के इस सफर में हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने सभी चाहने वाले लिसनर्स का ख्याल रखें। सो द लिसनर्स, इसी के साथ ही शो में अगेन वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। वैसे तो दिल नहीं कर रहा कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है। सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जाने। आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पर। तब तक के लिए हमारे साथ यानी रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM के साथ इसी तरह से जुड़े रहें, बंधे रहें, और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। We will be right back after a very short break.

0: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है?
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
0: ओहो, मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
0: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
0: चलें, उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी, क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
0: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
2: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तो मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: English or Arabic. तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM.
2: You are listening 97.1 FM.

जी तो लिसनर्स, एक बार फिर से खुशामदीद सभी सुनने वालों को और सभी चाहने वालों को दीवा डायलॉग में आरजे ज़ैनब फातिमा का सलाम। वेल लिसनर, जैसा कि अब हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं, सो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा पहला मोटिवेशनल कोट था वो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पॉजिटिव असरात मरतब ज़रूर करेगा। सो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे खूबसूरत से कोट की जानिब। ये कोट उन सभी लोगों के लिए है जो अपने गुजरते हुए वक्त को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। होते हैं हम सब में से ही कुछ ऐसे लोग जो कि हर वक्त हर चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। सो द कोट सेज, यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। तो जी, हमारे प्यारे से फिलोसोफर ने क्या कमाल बात कही है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप पीछे जाकर अपनी शुरुआत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां खड़े हैं वहीं से आप एक नया आगाज कर सकते हैं और आप अपने अंजाम को जरूर बदल सकते हैं। अच्छा तो लिसनर्स, अक्सर हम आजकल के दौर में क्या करते हैं, हम अपने आज का दिन इस सोच में खराब कर देते हैं कि काश मैं तब ये गलती ना करती, काश उस वक्त उस रास्ते पर ना चलती, या हमेशा अपने पास से रिलेटेड सोचते रहते हैं कि फलां वक्त में अगर मैं वो डिसीजन ना लेती तो आज ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ होती, आज चीज़ें ऐसी होती या फिर आज चीज़ें वैसी होती। लेकिन लिसनर्स, क्या ये सब सोचने से हम अपने पास्ट को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सो जो बीत गया वो हम सभी के लिए एक सबक है। असल ताकत आज में है, जो जिसमें आप जी रहे हैं, जिसमें आप मौजूद हैं। आज आप सभी के पास एक मौका है एक नया फैसला लेने का। सो लिसनर्स, मैं ये नहीं कहती कि अच्छा अगर आपने पास्ट में अच्छे अच्छे डिसीजंस नहीं लिए सो इट्स ओके। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, उन्हें पीठ पर बोझ बनाकर अगर आप आगे चलेंगे सो आपकी ज़िंदगी हमेशा एक रिग्रेट का शिकार रहेगी। सो आज से एक नया जज्बा अपने साथ लेके चलिए और ये कि अब जो हो चुका सो हो चुका। आपने क्या करना है, अपने आने वाली नई ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, इसमें मेहनत करनी है और हाँ, जो गलतियाँ आपने पहले की वो कभी भी रिपीट नहीं करनी। वो एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं हम सभी के लिए। उनका फरमान है कि बेवकूफ़ इंसान हमेशा दुनिया में वो होता है जो एक ही पत्थर से दो बार टकराता है। सो क्या आप भी ऐसे बनना चाहते हैं? नहीं ना। सो आपने क्या करना है, जो गलतियां आप सभी से हो गई पास्ट में इट्स ओके, लेकिन उनको कभी भी अपने प्रेजेंट या फिर अपने फ्यूचर में रिपीट नहीं करना। सो आपका अंजाम आपके गुजरे हुए कल से हजार गुना खूबसूरत बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। सो आज ही से कोशिश करिए जिंदगी में तब्दीली लाने की, खुद को बदलने की। सो डियर लिसनर्स, ये था हमारा आज का दूसरा खूबसूरत सा मोटिवेशनल सा कोट। उम्मीद करती हूँ कि पहले की तरह ये भी आपको अच्छा लगा होगा और हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि डीवा डायलॉग के इस सफ़र में हम कोशिश करें कि कुछ ऐसी बातें आप तक पहुँचाएँ जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल दें, ज़िंदगी में निखार पैदा करें और साथ ही साथ आपको पॉजिटिविटी की तरफ मुंतकिल करें। सो डियर लिसनर्स, इस कोट के हवाले से आपका अगर कुछ कहना है या फिर आप अपने ख्यालात हमसे शेयर करना चाहते हैं सो 01157100971 इट्स आवर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। सो इस नंबर के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना फीडबैक हम सभी से शेयर करते हैं
और मैं पर्सनली सभी के टेक्स्ट को पढ़ती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि शो में वो सब चीज़ें शामिल की जाएं जो आप सब सुनना चाहते हैं या फिर आप ख्वाहिश रखते हैं। सो वेल लिसनर्स, इसी के साथ ही वक्त हुआ है शो में एक अदद अच्छे से सॉन्ग को प्ले करने का, तो आइए मिलकर सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। होती है आप सभी से मुलाकात ट्रैक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।

सी तो लिसनर, जैसा कि मैं बात कर रही थी कि किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ ना सिर्फ हम खाना बनाते हैं बल्कि साथ ही साथ हम अपने चाहने वालों से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अब वो इजहार इस शक्ल में होता है कि हम उनके लिए उनका पसंदीदा खाना बनाते हैं, साथ में बैठकर खाते हैं और फिर इस तरह से प्यार, मोहब्बत और हलूस का जज्बा बढ़ता है। लेकिन मेरे सभी डीवास हमेशा किचन में जाकर ये चीज़ सोचती हैं कि अच्छा आज खाने में क्या बनाया जाए, क्योंकि कुकिंग इटसेल्फ इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क। हर आने वाले नए दिन में ये डिसाइड करना कि आज खाने में क्या बनाया जाए, क्या ऐसा खाना बनाया जाए जो कि सभी घर वालों को, चाहने वालों को अच्छा लगे। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, इसीलिए मैं लेके आती हूँ आप सभी के लिए डीवा डायलॉग में ऐसी मज़ेदार सी चटपट बनने वाली रेसिपीज, यानी ऐसी रेसिपीज जो कि टाइम कंज्यूमिंग ना हो, जल्दी से बन जाएं और हों भी बहुत डिलीशियस। सोचे हमेशा की तरह आज भी आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ द स्पाइस किचन में ऐसे ही मज़ेदार से रेसिपीज। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ये जो हमारा वीक चल रहा है, इट्स अ कॉन्टिनेंटल वीक, सो इस पूरे वीक में हम सभी ऐसे रेसिपीज ट्राई करेंगे जो कि इंटरनेशनली बहुत पसंद की जाती हैं और थ्रू आउट द होल वर्ल्ड लोग इन्हें बहुत ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, ये वही सिंपल सी बेसिक सी रेसिपीज़ हैं जो कि आप किसी भी 5-स्टार होटल में जब ऑर्डर करते हैं सो ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन इनको बनाना बहुत इजी होता है। जस्ट आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं और इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे जो कि हर घर में मौजूद ही होते हैं। आई थिंक सो कि हर 10 में से 2 ऐसे इंग्रेडिएंट होंगे जो कि आपके घर में नहीं होंगे, लेकिन बाकी के सभी इंग्रेडिएंट तो हर घर में मौजूद होते हैं। सो जी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का द स्पाइस किचन। सो जी मेरी प्यारी प्यारे लिसनर्स और सभी टीवर्स, आप जल्दी से अपनी नोटबुक रेडी कर लीजिए और आप अगर कोई काम कर रही हैं तो थोड़ी देर के लिए उस काम को स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आज का मेन कोर्स।

सो डियर लिसनर्स, आज की हमारी फर्स्ट रेसिपी है चीज स्टफ्ड चिकन ब्रेस्ट। सो बेसिकली ये दिखने में जितनी ही ज्यादा फैंसी लगती है, बनाने में उतनी ही ज्यादा आसान है। चलिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। अच्छा तो लिसनर्स, मैं सोच रही थी कि अभी क्योंकि कमर्शियल ब्रेक का वक्त करीब हुआ चल रहा है, सो अगर मैं अभी आप सभी से इंग्रेडिएंट्स शेयर करूंगी तो वो पूरी तरह से शेयर नहीं हो सकेंगे और हो सकता है कि इस तरह से कुछ इंग्रेडिएंट्स मिस हो जाएं। सो अभी हम वेट कर लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे डिटेल में इसके इंग्रेडिएंट शेयर करूंगी, साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इस रेसिपी को इंस्टेंटली जल्दी से बना सकते हैं बिना कोई भी दिक्कत के। सो द लिसनर्स, फिलहाल के लिए इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। So let's take a short break and we will be right back after a very short break. Tab tak ke liye stay tuned with us.

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: Bigger, bigger and better, better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से। रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं द दीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम पे। तो लिसनर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब हम अपने शो के लास्ट सेगमेंट की जानिब पहुंच चुके हैं, यानी कि अब बस थोड़ा सा ही साथ रह गया है मेरा और आपका। सो वेल, पूरी कोशिश करेंगे कि इस साथ को खूबसूरत बनाएं, मीनिंगफुल बनाएं और आपके साथ अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव चीजें शेयर करें। जैसे कि लिस्नर, कमर्शियल ब्रेक की वजह से उस वक्त आप सभी से इंग्रेडिएंट शेयर नहीं हो सके थे, सो आइए आप सभी से शेयर करती हूँ हमारी मजेदार सी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट, दो बड़े पीसेस, मोजरेला या फिर चैटर चीज हाफ कप। सो दोनों में से आप कोई से भी यूज कर सकते हैं जो आपके पास घर में इजीली अवेलेबल हो। साथ ही साथ इस रेसिपी में शामिल होगी शिमला मिर्च 2-3, एंड अनियंस। अच्छा, आपने क्या करना है, कैप्सिकम और अनियंस को बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। याद रखिएगा, अगर आप इन्हें बड़ा बड़ा कट कर लेंगे सो ना सिर्फ ये दिखने में अच्छी नहीं लगेगी बल्कि हमारी रेसिपी का ओवरऑल लुक और टेस्ट दोनों डैमेज करेगी। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। अब जरा बात करते हैं स्पाइसेस की। सो इस रेसिपी में शामिल होगा नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून। ऐसा कोशिश करनी है आप सभी ने कि बिल्कुल कम स्पाइसेस में आपने इस रेसिपी को रेडी करना है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले ऐड कर देते हैं सो हमारी जो रेसिपी का ओरिजिनल टेस्ट होता है, अरोमा होता है, वो इस तरह से बरकरार नहीं रहता और काफ़ी हद तक जायका चेंज हो जाता है। सो कोशिश किया करें कि आप बहुत ही कम स्पाइसेस यूज़ करें ताकि जो हमारी रेसिपी है उसका नेचुरल अरोमा बरकरार रहे। सो जी, हमारी इस रेसिपी का लास्ट इंग्रेडिएंट है ऑलिव ऑयल, या फिर आप नॉर्मल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून। वेल लिसनर्स, ये थे सभी इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आप सभी से शेयर कर दिए। जब तक आप इन इंग्रेडिएंट्स को नोट करते हैं, आइए मिलकर सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक

सी तो लिस्टनर्स, अब जरा हम अपनी रेसिपी के प्रोसीजर की जानिब बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा तरीका है, आपने बस इन ऐसे ही फॉलो करना है, सो आप बहुत इजीली इस रेसिपी को बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चिकन ब्रेस्ट को अच्छे से वॉश कर लेना है, ना सिर्फ वॉश करना है बल्कि अच्छे तक इसे ड्राई होने देना है। अब आपने करना कुछ यूं है कि आपने एक नाइफ की मदद से चिकन के पीसेस के अंदर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपने इस तरह के कट्स लगाने हैं कि पॉकेट्स बन जाएं। सो बेसिकली हम बना रहे हैं स्टफ्ड चिकन। सो स्टफ्ड चिकन बनाने के लिए जब आप कट्स लगा रहे हों, सो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम प्रॉपरली कट्स नहीं लगाएंगे सो जो हमारा स्टफ होगा वो इधर उधर बाहर निकलेगा। सो आपने इस तरह के कट्स लगाने हैं कि आपके चिकन के अंदर जस्ट पॉकेट्स बन जाएं। सो ये तो था स्टेप नंबर वन, अब जरा आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर टू की जानिब। सो द स्टेप नंबर टू इज मैरिनेशन। कोई भी रेसिपी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक अच्छी मैरिनेशन, और आप जितने ज़्यादा देर मैरिनेशन को रखते हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी हमारी रेसिपी बनती है। सो अब आपने चिकन के आर पार पॉकेट्स के अंदर नमक, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है इन्हें अच्छे से लगा देना है। सो बेसिकली मैं आपको मिनिमम टाइम बता रही हूँ कि आपने इस मैरिनेशन को 10 से लेके 12 मिनट्स के लिए रखना है, लेकिन अगर आपके पास वक्त की कमी नहीं है सो आप 20 से 30 मिनट्स के लिए भी इसको रख सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस। और पर्सनली अगर मैं आपको कहूँ तो अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो रेसिपी ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। सो यहाँ तक स्टेप नंबर वन एंड स्टेप नंबर टू हुआ जाता है कंप्लीट। अब जरा आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर थ्री की जानिब। सो द स्टेप नंबर थ्री इज स्टफिंग। सो अब हम क्या करेंगे, उन पॉकेट्स के अंदर थोड़ी सी बारीक कटी हुई कैप्सिकम, साथ ही साथ बारीक कटी हुई प्याज और बहुत सारी चीज शामिल कर देंगे। सो इन पॉकेट्स को बंद करने के लिए आप सिंपली टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो आपकी चीज़ है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले और अच्छे से अंदर ही रहे। सो अब बारी आती है हमारे फाइनल स्टेप की। सो इस स्टेप में हम एक पैन ले लेंगे, पैन में कुकिंग ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, ये आपकी चॉइस है, आप क्या यूज़ करते हैं उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। आंच को हमेशा हम मीडियम रखेंगे, क्यों, क्योंकि इससे हमारा चिकन अच्छे से पक जाएगा। अगर आप आंच तेज़ कर देंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि जो हमारा चिकन है वो अंदर से कच्चा रह सकता है। सो हमने चिकन को बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना, हम चाहते हैं कि हमारी रेसिपी अच्छी बने और डिलीशियस बने। सो इसलिए चूल्हे का, आंच का, इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। सो अब हम इन चिकन पीसेस को 7 से लेके 8 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और साथ ही साथ हम इसे चक करते रहेंगे चम्मच की मदद से कि हमारा जो चिकन है वो अंदर से कुक हो चुका है या नहीं। सो जैसे ही चीज़ मेल्ट होने लगे सो आप समझ जाएं कि आपका जूसी चीज़ी स्टफ्ड चिकन हो गया है तैयार।

लिसनर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा ये वीक चल रहा है कॉन्टिनेंटल रेसिपीज का। सो मैं रोज आप सभी के लिए ऐसे ही मजेदार सी कॉन्टिनेंटल रेसिपीज लेके आती रहूंगी। और अगर आपके भी है कोई पसंदीदा रेसिपी या आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई अच्छी सी रेसिपी सिखाऊं, सो उसके लिए आप हमें बता सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। तो जी जनाब, ये थी आज की मजेदार सी आसान सी लाजवाब सी रेसिपी जो आज हमने सीखी। अच्छा, बेसिकली ये वो रेसिपी है जो कि हम और आप अक्सर औकात महंगे रेस्टोरेंट्स में ट्राई करते हैं, लेकिन हम इतनी कोशिश नहीं करते कि क्यों ना इसे घर पर बनाया जाए। देखा आप सभी ने कितनी सिंपल सी थी, कितनी बेसिक सी थी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। सो अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आप इसे आसानी बना सकते हैं। बल्कि मेरा ख्याल तो ये है कि हमारे डीवास के साथ साथ हमारे जितने भी मर्द हजरात हैं, अगर आप भी इसे ट्राई करें तो आप भी इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये कुकिंग सेगमेंट आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। सो इस हवाले से अपना फीडबैक लाजमी शेयर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना फीडबैक हमसे शेयर करते हैं, क्योंकि इससे मुझे मालूम होता है कि आपको किस तरह की कम्युनिकेशन पसंद आ रही है। चलिए तो लिसनर्स, इसी के साथ ही अब हमारे शो का वक्त भी अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है। वेल, दिल तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि वक्त हमारे इख्तियार में नहीं है। हम जितनी कोशिश करते हैं कि हम वक्त को रोक लें, थाम लें, लेकिन वक्त तेज़ी से गुजरता चला जाता है और पलक झपकते ही हम जिंदगी के उस मोड़ में पहुंच जाते हैं जहां हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि हम पहुंचेंगे। सो यू हैव नो आइडिया कि आपकी आने वाली जिंदगी आपको जिंदगी के किस मोड़ पर ले जाए। सो मैं हमेशा से इसीलिए कहती हूँ कि आप कोशिश किया करिए कि आप अपने आज में जिए, अपने आज को बेहतर बनाएं। जो लोग पास्ट की टेंशन लेते रहते हैं या फिर आने वाले फ्यूचर की फिक्र में रहते हैं, सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ कि जो हर वक्त अपने जिंदगी को इन टेंशन में मुब्तला रखते हैं कि अच्छा पास्ट में ये सब चीज़ें हुई या फिर आने वाले फ्यूचर में ये सब होगा। सो वो लोग क्या करते हैं, कभी भी अपने प्रेजेंट को नहीं जी पाते। सो अगर आप जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहते हैं, सो कोशिश करें कि आज में जिए, अपने आज को बेहतर बनाएं, आज में वर्क करें। और हमारे आज के मोटिवेशनल कोट्स ने भी कुछ यही बयान किया है कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, सो आपको जरूरत है कि आप अपने आज को बेहतर बनाएं, साथ ही साथ आप आगाज करें भले छोटे ही कदमों से, लेकिन अगर आप किसी चीज का आगाज नहीं करेंगे तो अंजाम तक कैसे पहुंचेंगे। जी तो लिसनर्स, इसी के साथ ही मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाजत। आप सभी से मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नए एम्बिशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और कोशिश करें कि शो का वक्त अभी खत्म हो रहा है, लेकिन आपका दिन, आपकी जिंदगी अभी बाकी है। सो कोशिश करें कि आज के बाकी के पूरे दिन को अच्छी तरीके से गुजारें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और जिंदगी को हर एक छोटे स्टेप के साथ बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तब तक के लिए ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और अल्लाह हाफिज। जाते जाते आप सभी लिसनर्स के लिए एक खूबसूरत सा ट्रैक मैं प्ले कर देती हूँ। सो आइए इस खूबसूरत से ट्रैक को सुनते सुनते अलविदा करते हैं। आई मीन टू से शो का इख्तिताम करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।

0: beach resorts. You had booked a special holiday package for you and Miss Roshni. Should we confirm it?
1: नहीं यार, मैडम छुट्टी मनाने के मूड में नहीं है, छुट्टी करने के मूड में है. तो अगर आप कैंसिल ही कर दें तो शायद.
2: No, don't cancel it. Confirm it, हम लोग आ रहे हैं.
0: Okay, ma'am. Have a nice day.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट

0: तो इतनी परेशानी क्या है यार, सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना,
1: जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ।
1: ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM to 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
7: You are listening 97.1 FM.

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ?

0: Sinantondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106, Barrage Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
1: Park Foods, jo naam hai mayar ka.
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
3: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
4: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
3: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
4: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
3: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
4: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
3: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
4: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
3: टेस्ट भी वाइब भी।
5: You are listening 97.1 FM.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं सरूर। आज की सुबह मेरा आपका साथ रहेगा ठीक ठीक 2 बजे तक। बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का रेडियो वजन को ट्यून करने का प्लस चूज करने का। प्रोग्राम में मेरा आपके दरमियान हाल होती छोटी सी चुनू मुंजी कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक उस पर रही आपसे मुलाकात। प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे हमेशा की तरह इन्फॉर्मेशन, मेरी और आपकी होगी कम्युनिकेशन और होगी मिलकर इंटरटेनमेंट। बस जिन नए लोगों ने आज रवि फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका बड़े ही आसान सा है, वो 1157100971 इस खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेफ, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं।

लेकिन उसी के साथ साथ आप इतना भी कर सकते हैं कि प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM के नाम से। गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk की आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हमारा या फिर किसी भी आरजे ग्राम की किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो सब आपको वहाँ से मिल जाएगी। कौन सा प्रोग्राम, कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है, और बताइएगा जो लोग कामकाज की तरफ निकल चुके हैं, ऑफिसेज की तरफ निकल चुके हैं, कैसा गुजर रहा है दिन। अगर दिन थोड़ा सा अपसेट हो चुका है तो हम आपके मूड को करेंगे फ्रेश, आपके मूड को बनाएंगे एकदम स्वस्थ, क्योंकि प्रोग्राम का मकसद यही है कि मिलकर ओपन करते हैं इस खूबसूरत से लंच बॉक्स को, जिसमें ना सिर्फ खाना होता है बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी होती हैं जो आपने मुझे बतानी होती हैं। लेकिन यहाँ ऑफिस जाते साथ अगर खड़ूस बोस की डांट पड़ चुकी है तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अपने प्रोग्राम नहीं सॉरी अपने ऑफिस से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लेने के बाद किसी पार्क में या फिर किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ पर जाकर आप रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM को ट्यून कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तन्हाई का साथी सिर्फ और सिर्फ फ़ज़ा 97.1 FM ही है। साथ दीजिएगा, साथ होने का साथ जाएगा। प्रोग्राम में आपके साथ बेहद इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाएंगी, लेकिन प्रोग्राम में शामिल लोगों को कोई टॉपिक शामिल करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं।

सकते हैं, या फिर कोई मैसेज किसी प्यारे के नाम करवाना चाहे, या फिर कोई खूबसूरत सा ट्रैक किसी प्यारे के नाम प्ले करवाना चाहे, वो भी कीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लिए भी कोई ट्रैक प्ले करवा लिया करें, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ कि अपने आप को फर्स्ट पे रखें। बताइएगा जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुने हैं, बी सेफ बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। और घर बैठी होती है मुझे सुनिए, बताइएगा क्या मुझे क्या करते वक्त सुने हैं। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, रेसिपी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसी रेसिपी जो आप सलो राज के तरीके से बनाना चाहते हो ना, तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। नंबर मैं आपको नोट करवा चुकी हूँ। जैसा कि मैंने हमेशा की तरह जो अपना लास्ट सेगमेंट रखा होता है ना, वो म्यूजिक का रखा होता है, लेकिन अभी उससे पहले आधा घंटा जो है ना मेरा आपके दरमियान है। सो अभी जो है मैं आपके दरमियान इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगी और अपनी आवाज़ को भी शामिल करती रहूंगी, ट्रैक भी आप तक पहुंचाए देंगे ताकि आपको बोर ना किया जाए, आपको आप खुद बोर ना हो। और वैसे भी आज सलू राज की आवाज़ से कौन ही बोर होगा। बताइएगा भाई, कल मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, पर मुझे ये बताया कि वीकेंड आपका कैसा गुजरा, वीकेंड पे कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, कौन आया कौन नहीं आया, कहाँ जाना था और प्लान कैंसिल हो गया और इसके बाद मूड भी ख़राब हो गया। सो बताइएगा कि मतलब वीकेंड कैसा गुजरा, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर कामकाज की रूटीन पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। और शुरू में मुश्किल होती है, फिर बाद में आसानी जो है ना वो खुद बहुत पैदा होने लग जाती है। हर मुश्किल के साथ आसानी है, इस चीज़ का जो है ना आपने ख्याल रखना है सबसे पहले, कि अपने दिमाग में चीज़ को बांध के रखना है, बिठा के रखना है कि अगर कहीं पे आपको मुश्किल पड़ी है तो उसके साथ आसानी भी ज़रूर होगी। और वो कहते हैं ना, अगर ताला बना है तो उसके साथ चाबी भी बनती है। खैर अभी तक के लिए जो है प्रोग्राम में एक छोटे से ट्रैक को शामिल करेंगे सुरराज की फरमाइश पर, यानी मेरी फरमाइश पर, इसके उस पार फिर एक छोटी सी फरमाइश को पूरा करेंगे। अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड ऐप। मिलते हैं इस खूबसूरत से छोटे से ट्रैक के उस पार। सो अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड ऐप।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक एक बार से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स ऑन, आवाज आप सुन रहे हैं सलोरा। आज की हमेशा की तरह मेरा आपका साथ रहता है ठीक और ठीक 2 बजे तक। सो मैंने अपनी पसंद का भी ट्रैक शामिल कर लिया। मैंने कहा कि थोड़ी बहुत अपनी फरमाइश को भी पूरा करना चाहिए और प्रोग्राम उसको शामिल भी करना चाहिए। हमेशा आपको बताती हूँ कि अपने आप को फर्स्ट पे रखना चाहिए, फिर ये तो मतलब नहीं ना कि यार मैं अपने आप को ही भूल जाऊं। दिस इज नॉट फेयर। हर दफा है खैर, इन गानों पे बिल्कुल भी नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि सिर्फ इंजॉय करने के लिए होते हैं। इनके पीछे कोई ऐसी वैसी बात नहीं छुपी हुई। ये ना हो हम ये लड़कियाँ जो है ना ज़्यादा मतलब इस तरह के ट्रैक्स को सुनती हैं और सुनने के बल पर अपने ख्यालों में घुमा जाती हैं। सो उन ख्यालों से वापस आ जाए, कुछ भी नहीं होता जिंदगी में। शहजादे वेजादे को नहीं आते, खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, अपने पाँव पे खुद ही खड़ा होना पड़ता है। सो इस चीज़ को हम जितनी जल्दी मान लें ना उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे लिए नहीं बल्कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मेरा मानना ये है भाई। खैर, प्रोग्राम में जो है मेरे पास एक और छोटी सी फरमाइश। अभी मैंने रिसेंटली जो है ना देखा है, मतलब रिसेंटली एक मूवी आई है और मैंने उस मूवी की हीरोइन को देखा यार। वो बच्ची मैंने देखी थी बहुत पहले छोटी होती हुई, और अभी उसको इतने बड़े हीरोइन के साथ जो है ना वो हीरो के साथ जो है वो मूवी में डाला गया। अभी मूवी में उसके साथ उसका करेक्टर है एक हीरोइन के तौर पर। सवल नखरे ऐसी बातों सह लेंगे, पहले ऐसे थोड़ा जो गाना चेंज कर लेंगे। और यार मुझे भी मेरा बहुत दिल करता है कि मैं भी जो है ना पंजाबी थोड़ी थोड़ी जो है सीख लूँ, लेकिन नहीं आती तो क्या करें फिर। लेकिन आएगी, क्यों नहीं आएगी, ज़रूर आएगी। कब तक जो है हम उर्दू ही बोलते रहेंगे। इसी बात से मुझे एक शेर भी याद आ गया, लेकिन वो मुझे याद नहीं आ रहा कि वो है कौन सा। बस उसको याद करने के लिए जो है ना मुझे अपने जहन पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, और वो मैं डाल नहीं सकती क्योंकि थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ और मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने बात क्या करनी थी।

0: है किसी को किसी के लिए नहीं बनाया गया। अपने जज्बात पे काबू रखें, अपने ख्यालात पे काबू रखें, अपनी नज़रों पे काबू रखें। सबसे पहले आप अपने आप पे काबू रखें ताकि दुनिया वाले जो है ना वो आपका फ़ायदा ना उठा सकें। खैर मैंने म्यूज़िक चेंज किया था बैकग्राउंड क्योंकि मुझे लगा कि शायद उसको थोड़ा चेंज कर दिया। बट अभी मेरे पास जो है ना फरमाइश आई थी एक ट्रैक की, और वो ट्रैक जो है अजान समी खान की आवाज़ में, और माय फेवरेट एक्टर अजान समी खान। मुझे पता नहीं था कि मतलब ये सिंगर भी हैं, लेकिन मैंने जब इनका ये वाला ट्रैक सुना था ना, ये जो भी मेरे पास फरमाइश है, इस ट्रैक को जब मैंने सुना उसके बाद मुझे पता चला कि अजान समी तो एक्ट्रेस होने के साथ साथ यार एक सिंगर भी हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के। सो लाइए सुनते हैं इस ट्रैक को, इस ट्रैक के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून फजल 97.1 FM एंड अब अभी तक के लिए कहीं नहीं जा, जुड़े रहना है फजल के साथ विद सलो राज।
1: किसी और के साथ जिसको इस दिल ने कभी अपना नहीं तस्लीम किया। तुम अपने आप को मेरे काबिल नहीं समझते, चलो मान लिया। मैं किसी और को अपना नहीं मान सकती, ये कैसे मनवा। सरे तस्लीम खम होगा फकत तुम्हारी रूमी।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समाचारों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं आज की सोलसी के साथ। और प्रोग्राम में जो एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था, एक छोटी सी फरमाइश, उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आया होगा। उसी के साथ साथ प्रोग्राम में कोई इन्फॉर्मेशन भी शामिल होनी चाहिए, ना कि सिर्फ आपको मेरी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। क्या कहते हैं, मतलब आप मुझे बताएं कि आप किस बारे में क्या राय है।

ऑफ ऑल बड़ा ही खूबसूरत सा मैसेज है कि जिंदगी का कोई मकसद बना लो, फिर सारी ताकत उसी में लगा दो, तो आप ज़रूर कामयाब होगे। लेकिन कामयाब होने की एक ये कामयाब होने का ये भी राज है कि आप उसी सूरत कामयाब हो सकते हैं जब आप अपने गोल्स को अपने तक महदूद रखेंगे, ना कि दूसरों तक शेयर करेंगे। अगर आप अपनी आने वाली ज़िंदगी की प्लानिंग को अपने तक रखेंगे ना, तो आई मेक श्योर पक्का वाला कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। सो ज़िंदगी में आने वाला जो टाइम है उस पर आपने किसी भी तरह की कामयाबी को हासिल करना है, किसी भी तरफ जाना है, ज़िंदगी का कोई मकसद बनाना है, उसको सिर्फ अपने तक महदूद रखना है, ना कि दूसरी आवाम को भी बताना कि यार मैं ये करने वाली मैं ये करने वाली। सो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर कर देते हैं ना, तो कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आके आपको ये कहेंगे कि नहीं ये तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। तो फिर वो आप जो है ना आपका माइंड पकड़ पकड़ कर जो है नेगेटिव बातें लेकर आता है, नेगेटिव ख्याल लेकर आता है, और फिर आपसे वो चीज़ वाकई नहीं हो पाती। लेकिन आप उस चीज़ को कर सकते हैं, ये बात आपको भी है जो है इस बात का पता। लेकिन हम लोग जो है ना दूसरों की बातों में आ जाते हैं। सो सबसे पहली बात कि दूसरों की बातों में नहीं आना, और दूसरी बात ये कि अपनी ज़िंदगी के मकसद को सिर्फ अपने तक महदूद रखें। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचाए। सो मेहनत आपने खामोशी से ही करनी है, ना कि ऐलान के थ्रू करनी है कि यार मैं ये करने वाला हूँ ये करने वाली हूँ। नो, अपने गोल्स को सिर्फ अपने तक महदूद रखें। जब आप अपने गोल्स को अपने तक महदूद रखेंगे तो ज़िंदगी में आने वाली हर कामयाबी जो है ना वो आपके कदम चूमेगी। और बात ये कर रहे थे कि जब आप किसी को किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी को लेकर इस तरह से लेकर चलना चाह रहे हैं, तो वो एक तो नज़र भी लग जाती है, और नज़र सो रही आपको भी पता है, और नज़र बहुत गंदी चीज़ है, इससे बच के रहना चाहिए। और दूसरा ये कि जब आपको कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो आपको बोले कि नहीं ये तुम नहीं कर सकते, तो फिर आपका एक दिमाग जो है ना वो आपको डामाडोल करने लग जाता है। फिर आप अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे होते, आप उन लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते जिनको आपने बताया होता है कि हमने इस मकसद को हासिल करना है, हमारी ज़िंदगी का ये मकसद है कि इस तक हमने पहुँचना है। फिर आप अपने लिए उस चीज़ पर नहीं चलते, आप दूसरों की वजह से चलते हैं कि फलां बंदे को मैंने इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी थी, फलां बंदे को मैंने इस बारे में बताया था, तो अगर मैं इस काम में आगे नहीं बढ़ा तो यार मतलब मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। तो बाप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करने लग जाते हैं। सो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं भी अगर किसी भी तरह की कोई प्लान कर लेती हूँ, किसी भी तरह की कोई प्लानिंग कर लेती हूँ आगे आने वाले टाइम के लिए, तो मैं उसको सिर्फ अपने तक महदूद रखती हूँ, ना कि बाकी लोगों भी जाके बताती हूँ कि ये है। अच्छा, पहले मेरी आदत थी इस तरह की कि मैंने सबको जाके बताना कि अभी मुझे एक खुशखबरी मिली है, तो मैंने सबको जाके धड़ल्ले से बता दिया। अब उसके बाद मुझे एहसास होता है कि नहीं यार, हर बात पहले नहीं बतानी चाहिए, बाद में बेइज्जती भी हो जाती है अगर वो बात पूरी ना हो तो। सो अपनी ज़िंदगी के मकसद को आप खुद ही हासिल कर सकते हैं, ना कि कोई दूसरा तीसरा इंसान आपको उस तरफ घसीट के लेके जा सकता है। हाँ, ज़िंदगी में समझाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको मोटिवेशन देंगे, मोटिवेट करेंगे, और बहुत से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं, यानी कि 90% में से मुझे 10% लोग ऐसे लगते हैं जो बहुत बहुत बहुत कम जो होते हैं अब वो आपको अच्छी राय देंगे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाएंगे, जो आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो चाहेंगे कि आप कभी भी कामयाब ना हो सकें। खैर, अभी के लिए जो है प्रोग्राम में एक छोटे से ट्रैक को शामिल करते हैं, फिर मेरे आपके दरमियान एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक आयल होने वाली है, और ये ना हो कि कमर्शियल ब्रेक वो आधी अधूरी बीच में रहे, ट्रैक आधा अधूरा बीच में रहे, जो आपकी फरमाइश भी पूरी ना हो। सवाल आइए चलते हैं एक छोटे से खूबसूरत से ट्रैक की जानिब। कोई ट्रैक पे करवाना चाहें आप भी तो करवा सकते हैं, कोई फरमाइश पूरी करवाना चाहें, कोई मैसेज किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें, सो बताइएगा। जिन्हें लोगों ने आज रबी फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया, भेज चुके आप तमाम सवालों का प्रोग्राम में शामिल होने का नंबर आपको नोट करवाए देती हूँ, 01157100971। इस खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेफ, और सेफ कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। साथ ही में आप हमारे साथ लाइव कॉल के थ्रू भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, ना कि सिर्फ आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं बल्कि आप मुझे अपनी आवाज़ भी सुना सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में हम एक और आवाज़ को सुन लेते हैं, और सो इस खूबसूरत सी आवाज़ की छोटे से किस बार मेरे आपके दरमियान हाई लोग एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक किस बार रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड डैप, मिलते हैं इस ट्रैक के उस बार।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर सबको शामिल करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। फिर गया मैं, आप सुने लंच बुक्स तो जब आप सुने सलोरार की सफर, मुझे लगा कि मुझे भी अब थोड़ी सी ना लंच ब्रेक कर लेनी चाहिए क्योंकि मेरे पेट में अब चूहे दौड़ने लगे हैं भूख से। खैर, अभी के लिए प्रोग्राम में जो है ना, मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश आई है, इस फरमाइश को पूरा कर देते हैं। तब तक हम भी अपनी लंच ब्रेक कराते हैं, आप भी अपनी ब्रेक पे जाइएगा। अभी जो है ना, ये ड्रामा आया और मुहाफिज ड्रामे का नाम है और ये काफ़ी मज़े का ड्रामा है और इसका ट्रैक और भी ज़्यादा मज़े का है। मुझे एक तो समझ नहीं आती कि मेरी चॉइस और मेरी लिसनर्स की चॉइस काफ़ी मिलती जुलती होती है, अक्सर नहीं बल्कि होता है ऐसे, कभी कभार नहीं, मतलब होता ही रहता है।
1: सिखाया नहीं,
0: सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पर, चाहेंगे आपसे जल्द सभी के लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड टैप।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुंदर की समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं सलू राज की। सवाल उसी के साथ साथ अब जो है वो वक्त हुआ जाता है खत्म। अब आपको मुझे देनी होगी इजाजत। कल तक के लिए अपना, अपने प्यारों का, अपने इर्द-गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। छोड़ जाती हूँ कोर्ट छोड़ी फरमाइश के साथ। तो कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
5: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
14: This is a public service announcement.
15: The station that plays
16: foot tapping music.
17: Hazar 97.1 FM.
11: You are listening 97.1 FM.

0: We are Play. Fazan 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

वेलकम बैक सामीन रेडियो फसा। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। कल का दिन आज की बनिस्बत कम दर्जा हरारत पर मबनी था और आज का दिन 26 डिग्री सेंटीग्रेड है नॉटिंघम के इस वक्त वेदर। तमाम नए सुनने वाले सामीन को वेलकम। आप कहां कहां से हमें सुन रहे हैं, हमें अपने नाम के साथ अपने शहर के नाम के साथ अभी मैसेज कीजिए। रेडियो फजा आपका अपना रेडियो है, FM 97.1 एंड डैश। गूगल पे सर्च कीजिए और ऑनलाइन समाप्त कीजिए। दुनिया के किसी भी कोने में हो आप फजा 97.1 FM को सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं FM 97.1 एंड डेब। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपने एहसास, अपने जज्बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए, हमें मैसेज करने के लिए 0115-7100971 डायल कीजिए। अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखिए और अपना पैगाम लिखिए और इरसाल कीजिए। सुनते रहिए फजा 97.1 एंड डैब।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

Welcome back for the 97.1 FM and Tab. लिसनर्स से पहले आप सुन रहे थे कुछ सॉन्ग, अभी दोबारा प्ले करेंगे आपके लिए मैशअप और नॉनस्टॉप. सुनिएगा रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैब.

या ना ना मुझे मार देता जान, अब तू आई है तो बाल बाल बचे हम, मेरी गली तेरे लिए ही तो रोशन, तू आई इसे चार चांद लगे अब जानम, तुम हो अब तो क्या गम, महक उठा है आलम तेरी जुल्फों के।

आप सुन रहे हैं सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। आप भी अपने किसी दोस्त किसी फ्रेंड को कोई गाना कोई मैसेज डेडिकेट करना चाहते हैं तो अभी हमें मैसेज कीजिए 0115710971 पे अपने नाम के साथ अपने शहर के नाम के साथ। हम आपकी आवाज़ आपका पैगाम आपके एहसास आपके जज्बात दुनिया तक पहुंचाएंगे।

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, इससे रब्ता किया जाए।
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
0: Bigger and better the radio station for people who love music. 97.1 FM.

लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर एक दोस्त ने क्या ही खूब कहा कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। यानी मिलने से है जिंदगी, आपके वजूद से ही जिंदगी है। इसलिए कोशिश कीजिए मिलते रहा करें, क्योंकि दरख्त को पानी ना मिले वो मुरझा जाता है, मर जाता है। इसलिए मिलने से जिंदगी बढ़ती है।

चलिए अब आपके मूड को स्विंग करते हैं और प्ले करते हैं कुछ न्यू सॉन्ग। फसा 97.1 FM एंड टैप। आप भी अगर एंजॉय करना चाहते हैं अपनी पसंद का सॉन्ग, अपनी पसंद का गाना, भी हमें टेक्स्ट कीजिए 0115710971 पे अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ। हम आपकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए आपकी पसंद का गाना प्ले करेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो अपनी राय का इजहार कीजिए।

बास बातें अगर बोल दी जाएं तो रिश्ते मर जाते हैं, और अगर दिल में रख ली जाएं तो खुद इंसान ही मर जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए ऐसी बातें ना दिल में रखें और ना ही इंसानों के सामने। भला इसी में ही है कि खामोश रहा जाए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रابطہ करें 0759315066969। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping G7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, students learning and skills.

0: की अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
1: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays.
2: Foot tapping music.
3: Huzza 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham,

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station that plays
9: foot tapping music.
10: Haza 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
12: You are listening 97.1 FM.

कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM.
13: This is a public service announcement.
14: The station that plays
15: foot tapping music.
16: Hazar 97.1 FM.
10: You are listening 97.1 FM.

कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैब।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
8: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
9: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
8: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
9: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
8: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
9: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
8: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
9: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
8: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
9: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
8: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
10: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
8: फजान 97.1 FM,
9: आई लव इट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रापता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-079-32।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आप सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
9: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
8: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
9: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
8: टेस्ट भी वाइब भी।
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station
9: that plays
10: foot tapping music.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1 एफएम।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डर ही नहीं, तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.7